Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: This is the all time.
1: चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हसीने उड़ा दो.
2: This is where culture meets celebration. This is the Indo rhythm of TNT. The Indo

अगर आंटी का चांस आ गया जानता अंक से श्यामस बसा तू जून It's singing 1061. What do you want to tune like this? You don't want to stop, but.